0: गुण हमारे मूल्य होते हैं। धन और पद समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे मूल्य व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा बनाते हैं और उसे समाज में सम्मान दिलाते हैं। मूल्य वो प्रकाश है जो हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों को सही दिशा देता है। जिनके जीवन में अच्छे मूल्य होते हैं, वे हर परिस्थिति में अपनी पहचान बनाए रखते हैं।
1: अनमोल विचार के बाद आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृवंदना।

0: श्रोताओं, अल्ताफ राजा के गाए इस नात के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए एग्री टिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें काजू की खेती के संदर्भ में। काजू के पेड़ से तो आप सभी वाकिफ होंगे। काजू के फल से जो नट मिलता है, यानी काजू बीज जो होता है, उसका बाज़ार में अच्छा भाव होता है और साथ ही साथ इससे किसानों को काफ़ी आर्थिक आय भी हो सकती है। काजू के जो फल होते हैं उससे भी बहुत तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिसमें स्क्वैश, जेली और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। लेकिन हमारे इन द्वीपों में काजू की खेती सिर्फ घर के आसपास ही की जाती है और यहाँ पर काजू के बागान बहुत ही सीमित हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर काजू की खेती बड़े पैमाने पर करने से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। काजू की खेती करने के लिए किसी भी प्रकार की भूमि को हम चुन सकते हैं, लेकिन लाल बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाई गई है। काजू की खेती के लिए ज़मीन में पानी के निकास का प्रबंध होना ज़रूरी है, यानी ज़मीन ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था ना हो और जहाँ पर लंबे समय के लिए पानी रुकता हो। ऐसी जगहों पर काजू के पेड़ ठीक प्रकार से नहीं पनप पाएंगे और उत्पादन भी कम मिलेगा। काजू की खेती के लिए 8 मीटर की दूरी पर 90 घन सेंटीमीटर यानी 90 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा तथा इतना ही गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढों को मिट्टी व खाद से भर दें और बाद में इन गड्ढों में काजू के पेड़ों को रोप दें। काजू के पेड़ में भी अन्य बागानी फसलों की ही तरह 2 किश्तों में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम वर्ष में यूरिया 200 ग्राम तथा सिंगल सुपर फास्फेट 400 ग्राम प्रति पेड़ देना चाहिए। दूसरे वर्ष में यूरिया 400 ग्राम तथा सुपरफास्फेट 400 ग्राम और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहिए। काजू के 3 वर्ष पुराने पेड़ों में 800 ग्राम यूरिया

0: 600 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ दें। काजू के वृक्षों को तीसरे वर्ष के बाद 1 किलोग्राम यूरिया, 600 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रतिवर्ष प्रति पेड़ के हिसाब से दे दें। उर्वरकों की जो मात्रा हमने आपको बताई है, इसे दो भागों में बांटकर आपको इस्तेमाल में लाना है। एक तो मानसून की शुरुआत के समय और दूसरे सितंबर अक्टूबर के महीने में। किसान भाइयों, हमारे इन द्वीपों में काजू के जो पेड़ हैं उनसे अच्छा उत्पादन ना मिलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि किसान भाई इनमें खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। इन पेड़ों को अपने हाल पर ही छोड़ देते हैं और जो कुछ उत्पादन मिलता है उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अपने बागान की मिट्टी की जांच के हिसाब से अगर आप खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इससे बागान से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि लाभ ज़्यादा होगा बनस्बत खर्च के। किसान भाइयों, बारिश के दिनों में जल निकास का प्रबंध भी जरूर करें, जिससे कि पेड़ पानी के रुकाव से क्षतिग्रस्त ना हो। आवश्यकता अनुसार बाग में खरपतवार भी निकालते रहें ताकि काजू के पेड़ों को खरपतवारों से भी कोई हानि ना हो। पेड़ों के चारों ओर थाला भली प्रकार बना लें तथा उसकी गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करते रहें। सूखे मौसम में थाले को सूखे खरपतवारों से ढक दें जिससे कि नमी संरक्षण हो सके। किसान भाइयों, चूंकि काजू का पेड़ 5 वर्ष बाद फल देने लगता है, अतः इन 5 वर्षों में आप काजू के बागानों में अंतः फसल खेती जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आप दलहनी फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता जो है वो भी बढ़ती रहे। काजू की गिरी को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों में मिलीबग प्रमुख है। अन्य नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों में पर्ण चूसक व पर्ण भ्रमक इल्लियां हैं। इन कीड़ों के नुकसान से बचाव के लिए एंडोसल्फान का छिड़काव किया जा सकता है। कभी कभी काजू में पर्ण धब्बा तथा एंथ्रैक्नोज बीमारियों का भी प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए बोड़ो मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप काजू की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्रीटिप्स कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए

0: संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। यह प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms, and stronger coordination among law enforcement agencies, banks, and digital

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड कल दिनांक 26 को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा करेगा। जलयान की वापसी अगले दिन दिनांक 27 को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी सेंटिनल आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर लिटिल अंडमान कार

0: निकोबार, चावरा, तेरेसा, कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा करेगा। जलयान की वापसी दिनांक 28 को 8:30 पर कैम्बल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट दिनांक 28 को सवेरे 7 लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी अगले दिन 29 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन 26 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा जलयान की वापसी आज ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा जलयान की वापसी आज ही दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साहिल एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपनी सबसे शांत और सुंदर छवि में दिखाई देती है। दूर तक फैला नीला समंदर, किनारे से टकराती लहरें और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है मानो कुछ पल के लिए ही सही, दुनिया यहीं थम जाए।

दोस्तों, साहिल पर आती जाती लहरें हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। लहरें बार बार साहिल से टकराती है, लौट जाती है और फिर नई ऊर्जा के साथ वापस आती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी है। हर बार एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े होना है, आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है।

0: जी हाँ दोस्तों, आज इंद्रधनुष कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे जो केंद्रित था साहिल शीर्षक पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 280वीं कड़ी।

लंका में पवनसुत ने वहां के वनों की जो शोभा देखी तो उनका मन अत्यंत पुलकित हो गया। वह एक पर्वत पर जा विराजे जहां से रावण की नगरी का अनुपम दृश्य दिख रहा था। मणियों से जड़े प्रकाशित परकोटे, सुंदर भव्य भवन, चौराहे, बाजार, सड़कें, गलियां, हाथी, घोड़े, अगणित रथ और नाना आकार प्रकार वाले राक्षसों के समूह, भीमकाय योद्धा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अत्यंत चौकसी से नगर की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने निश्चय किया कि रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश करेंगे। मच्छर का स्वरूप धारण कर वे नगर द्वार पर पहुंचे ही थे कि लंकनी नामधारी राक्षसी ने टोका, बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? तुम जैसे चोरों चक्कों का मैं आहार करती हूं। हनुमान ने उसे एक भरपूर घूंसा जड़ दिया तो वह धराशायी होकर रक्त की उल्टी करने लगी। संभल कर उठते हुए बोली, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। हे तात, मेरे बड़े भाग हैं कि श्रीराम के दूत को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस कान की 280वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक थे उत्तरा केलकर, शोभना राव और श्रीकांत पारगांवकर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सवेरे 7:30 पर सुनेंगे पर्यावरण कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर मंजू नायर की वार्ता होगी पर्यावरण संतुलन व बदलता मौसम, साथ ही कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे सलमा आगा। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप के एस गोपाल कृष्ण का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन सुनेंगे। SMS My Choice कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में कुछ प्रसिद्ध गाने आप सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम सुनिए 12:30 पर। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे ए हरिहरन। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुनेंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम और

3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा। यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनवाया जाएगा। 4:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। 5:00 सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6:00 डॉक्टर वाई रामाकृष्णा से की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। महफिल कवाली कार्यक्रम का आनंद लीजिए 6:30 पर। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। 7:20 पर कुछ फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे। 7:30 पर युवानी के तहत सुनिए युवा संसार, जिसमें प्रसारित किया जाएगा आरटी बर्मन से की गई बातचीत। रात 8:00 सुनिए चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार की बात कुछ देशकान आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर। और रात 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं, जबकि रात 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:30 पर मौसम की जानकारी के साथ सभा की समाप्ति होगी। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलं, आम आदमी पार्टी इति दलं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदात्री सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिमबंग, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारम् अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्व मध्यप्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नानास्थानेषु उष्णतरंगस्यानुमानमपि विभागेनानेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं न भविष्यति, सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते, या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं, इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के इलाकों में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता 89% और न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का तापमान रहा 26.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:57 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46 पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहे यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे तक श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है, जबकि यात्री विमान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, आपको याद दिला दे कि अब से कुछ ही देर यानी 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सवेरे 7:30 पर सुनेंगे का पर्यावरण कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर मंजू नायर की वार्ता होगी पर्यावरण संतुलन व बदलता मौसम, साथ ही कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से कार्निकोबार की शांता सिट्रिक को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से माहव्यापी थिएटर कार्यशाला आज से शुरू। और प्रशासनिक कारणों के चलते MV नालंदा के स्थान पर अब MV कैंबल बे 29 जून को नानकौड़ी होते हुए कैंबल बे के लिए रवाना होगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों और संगठनों से स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशंसा पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार कला, वाणिज्य, शिक्षा, खेलकूद व संस्कृति और समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 24 जुलाई शाम 5 बजे तक सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ गोपनीय सेल सचिवालय के पास जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। नामांकन संबंधित जिलों के PCCF, DGP, प्रधान सचिव, आयुक्त, सह सचिव, सचिवों और उपायुक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। अन्य विभागाध्यक्ष केवल अपने संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही सिफारिश कर सकते हैं। यदि किसी टीम को नामांकित किया जा रहा है तो टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और टीम में केवल अनुकरणीय कार्य दिखाने वाले व्यक्ति को ही प्रायोजित किया जाना चाहिए। इस पुरस्कार के लिए सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी व्यक्ति दोनों ही पात्र हैं। कार निकोबार की तपोइमिंग गांव की शांता सिट्रिक प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाली निकोबारी जनजातीय समुदाय की पहली कलाकार और निकोबार जिले की पहली नागरिक बन गई हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति निदेशालय के तहत संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार संगीत नाट्य अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली और अन्य प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा कला

को पहचान देने के लिए स्थापित सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के लिए लोक नृत्य की श्रेणी के तहत इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो पारंपरिक निकोबाली लोक नृत्य के संरक्षण, प्रचार और प्रसार में शांता सिट्रिक के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह ने अंडमान द्वीप समूह में जंगली बैगन की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये क्षेत्र इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के हिस्से के रूप में जाने जाने वाला विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। वनस्पति शास्त्री डॉक्टर लालजी सिंह द्वारा इसकी खोज मध्य अंडमान के वन में की गई। इस नई प्रजाति सोलेमन पांडेई का वितरण द्वीप के केवल कुछ ही सीमित क्षेत्रों में से है। अंडमान से खोजी गई जंगली बैगन की इस नई प्रजाति का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे के सम्मान में सोलेनम पांडे रखा गया है। डॉक्टर लालजी सिंह के अनुसार इस प्रजाति में बैगन की फसल में होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है। रंगत मॉनसून मैराथन 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्कूली छात्र, खिलाड़ी और आम जनता हिस्सा ले सकते हैं। इसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ शामिल है। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये के साथ पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रतिभागियों को सुबह 5:20 तक निम्बूतला चौक पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है थिएटर कार्यशाला और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति निदेशालय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से आज से 24 जुलाई तक महीने भर चलने वाली थिएटर कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन आज दोपहर 3:30 अंडमान क्लब में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यशाला निदेशक सुरेंद्र शर्मा और सहायक निदेशक अविनाश बी राव देशपांडे के मार्गदर्शन में अभिनय की कक्षाएं शुरू होंगी। इच्छुक प्रतिभागी जिन्होंने इस कार्यशाला के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे मौके पर ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते 30 जून को श्रीविजयपुरम से नानकौड़ी होते हुए कैम्बलवे जाने वाले जहाज MV नालंदा की यात्रा को रद्द किया गया है। MV नालंदा के स्थान पर अब MV कैम्बलवे 29 जून को रात 9 बजे हेडो जट्टी से नानकौड़ी होते हुए कैम्बलवे के लिए रवाना होगा। कैम्बलवे से इसकी वापसी यात्रा 1 जुलाई सुबह 10 बजे नानकौड़ी होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। जिन यात्रियों ने इस यात्रा के लिए टिकटें खरीदी थीं, उनसे अपने मौजूदा टिकट रद्द कर MV कैम्बलवे के लिए नए टिकट खरीदने को कहा गया है। इस यात्रा की टिकटें आज सुबह 9 बजे से जारी की जाएंगी। उधर प्रशासनिक कारणों से जहाज MV कैम्बलवे की 1 जुलाई को सुबह 10 बजे की श्रीविजयपुरम से विशाखापत्तनम की निर्धारित यात्रा को स्थगित किया गया है। अब ये जहाज 3 जुलाई को शाम 4 बजे हेडो जट्टी से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। यात्रियों को उसी पुराने टिकट पर जहाज की यात्रा करने को कहा गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए स्कूल शिक्षकों से स्व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों की सराहनीय सेवाओं को सार्वजनिक पहचान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, केंद्र सरकार के स्कूलों, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूलों, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और CBSE या CISCE से संबद्ध स्कूलों में कार्यरत सभी स्कूल शिक्षक और

0: स्कूल प्रमुख इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। सामान्यतः सेवानिवृत्त शिक्षक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं, हालांकि जिन्होंने इस कैलेंडर वर्ष में 30 अप्रैल तक अपनी सेवा प्रदान की है वे पात्र हो सकते हैं। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से श्री विजयपुरम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में कल ओलंपिक डे रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ को सेलुलर जेल से हरी झंडे दिखाकर रवाना किया गया, जो फ्लैग पॉइंट पर पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने द्वीप समूह यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर द्वीप समूह में पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को द्वीप समूह में पर्यटन की अपार संभावनाओं से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने उठाए गए मुद्दों पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से कार्निकोबार की शांता सिट्रिक को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से माहव्यापी थिएटर कार्यशाला आज से शुरू। और प्रशासनिक कारणों के चलते एमवी नालंदा के स्थान पर अब एमवी कैंबल बे 29 जून को नानकौड़ी होते हुए कैंबल बे के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल को छू जाएगा। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक भाव है, अपने देश के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देने का संकल्प। ये गीत हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है जो अपनी मिट्टी को माँ समझकर उसके लिए सब कुछ लुटा देता है।

कभी कभी कुछ धुन सुनते ही वतन की मिट्टी की खुशबू, अपने घर की चाह और देश से जुड़े हर एहसास फिर से जिंदा हो जाते हैं। चाहे हम कहीं भी हो, हमारा दिल हमेशा अपने वतन से जुड़ा रहता है।

हर देशभक्ति की धुन में एक अनकही कहानी होती है, हिम्मत, फ़र्ज और बलिदान की। ये हमें उन वीरों की याद दिलाता है जो अपने वतन के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप देशराग्नि कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पर्यावरण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर मंजू नायर की वार्ता संतुलन व बदलता मौसम।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्प्रभाव, जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। आज पर्यावरण कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। विषय है पर्यावरणीय संतुलन व बदलता मौसम। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर। डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में।
2: नमस्कार।
1: क्लाइमेट के पैटर्न में बदलाव आ गया है जिसके कुप्रभाव अब नजर आ रहे हैं, क्या समाधान है इसका?
2: आपने जो प्रश्न किया उसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि पैटर्न में बदलाव क्यों आया। जो जलवायु पृथ्वी पर थी उसमें ऐसे गंभीर बदलाव आए कि उसके दुष्परिणाम मनुष्य पे पड़ रहे हैं, तो इसका पहला जिम्मेदार तो मनुष्य ही है। तो विश्व स्तर पर जो बढ़ते पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हुए हैं उनसे निजात पाने में आज जो उपभोक्तावाद है और उत्पादकता पर तकनीकों की जो तारतम्यता होनी चाहिए उसकी कमी की वजह से ही ये परिणाम हमारे सामने आए हैं, जो कि विकराल रूप में है। और इसका समाधान पाना, इसके लिए विश्व के सभी देश आगे आए हैं, समाधान पाना अत्यंत जरूरी है।
1: ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये क्या है और इसका क्या महत्व है?
2: ये शब्द बहुत प्रचलन में आ गया है और ब्रांडेड ग्रीन, जो कि हम उपभोक्तावाद के इस जमाने में हैं तो कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए हम बना रहे हैं ब्रांडेड ग्रीन। तो हमारे पास जो वस्तुएं घर पे हम लाते हैं उसमें ऐसी चीज़ें हों जो बायोडिग्रेडेबल हों और जल्दी से जल्दी वो जो है सम्यक तौर पे अपने चारों तरफ के वातावरण में मिश्रित हो जाए, उससे परिणाम जो निकलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का हमने बहुत अच्छी तरह से उसको कंट्रोल किया है, वैसे ही अन्य चीजें जो हमारे आसपास है

0: जरूरी दैनिक जीवन की चीजें जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, उससे हमारे वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस की उत्पादकता बढ़ी है उसको रोकने में ये आवश्यक है कि हम जो है ग्रीन आइटम्स और ग्रीन जो हमारे पास तकनीक है उसका इस्तेमाल करके उन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी लाएं, तभी सफलता होगी ये जो दुष्परिणाम हमारे आ रहे हैं उसको रोकने में।
1: तो आम आदमी के लिए आप बताइए क्या करे वो।
0: देखिए, पहला तो निकला है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि इनके दुष्परिणामों के बारे में जानकर उसकी छटाई और उसके सफाई के लिए काम करना। हमारे पास ऐसे लेबल्ड मैन्युफैक्चर्ड आइटम हैं, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो उन लेबल्ड आइटम्स को ही आप खरीदें, अपने घर पे उन चीजों को लाएं जिसमें कि लेबल लगा हुआ है कि ये ग्रीन वॉश किया हुआ है या ये ब्रांडेड ग्रीन है, उन चीजों को खरीदें, भले ही थोड़े वो महंगे हों लेकिन उसका इस्तेमाल आप करें। वैसे ही हमारे पास अब मीडिया इतनी ताकत हो गई है, हमारे पास ग्रीन पोस्टर भी बनने लगे हैं और मीडिया में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो ऐसे चीजों के प्रमोशन को बताती है और लोग बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो हमारे पास ऐसे दो तरीके हैं जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग पे ध्यान देते हैं और दूसरा एडवर्टाइजमेंट्स पे। तो इन तरीकों से, इन वजहों से, इन जरियों से हम जो है मनुष्य में एक आप कह सकते हैं कि ये लहर की तरह है कि ये आ सकती है और इसको जो है आगे बढ़ा।
1: तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम जो युवा इस समय आपको सुन रहे हैं जी, उनसे आप क्या कहेंगे?
0: ये कि जो ब्रांडेड ग्रीन कहा गया है या हम अभी बहुत तरीके से ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ सचेत हो गए। एक तो हम अपने दीपों में देखें हम कितने सफल हैं प्लास्टिक के बारे में, कचरा प्रबंधन का आप देखें, ये सामुदायिक जिम्मेदारी दी गई, लोग खुद छोटे बच्चे कह जाते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, रोक देते हैं, तो ये तो एक सफलता वाली बात हुई ना। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पास कचरा रोड के साइड में जमा होता था, अभी तकनीक बन गई है कि वो जमीन के अंदर बॉक्स लगा के ऊपर से डालो तो वो अंदर जमा हो जाएगा, बाद में आके उसको निकालना और उसको जो भी प्रबंधन करना ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये तो इतना व्यापक हो गया है और इससे जो है जो प्रबंधन करते हैं उनको भी सहूलियत हो गई और जो वेस्ट कर रहे हैं उनको भी कि हमें कम मात्रा में भी लाना है और डालना भी है तो एकदम परिमाण में डालना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे ध्यान दिया जाए, परिवार के स्तर पे, छोटे बच्चों के स्तर पे, समुदाय के स्तर पे, तो लोकल पे फोकस करके हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं।
1: आपने गीला कचरा सूखा कचरा की बात की
0: जी,
1: इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती
0: जी,
1: है
0: जी, आपने
1: तो
0: सही।
1: महिलाओं को क्या कहेंगे आप?
0: जो हमारी महिलाएं हैं, भले ही उनकी जिंदगी में कहूंगी कि आजकल महिला सिर्फ घर की चौखट पे नहीं बंधी है, उसको बाहर भी जाना होता है, तो अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है, वो बच्चों को भी अवेयर कर सकती है और घर में एक हॉबी बना ले, हैबिट बना ले, तो कहीं आगे पीछे होने के नहीं है। ये बॉक्स जो है आप इसी में डालो जी, आपने जी। वहां कमरे में बिखेरा था या इसको यहाँ डाल दे, कमरा भी साफ है और हमें भी इजी है। और साथ ही साथ घर में ग्रीन चीजों को, जो हमने कहा ऑर्गेनिक चीजें हैं या कुछ ऐसी चीजें जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, उसको जो है हम, एक और बात अभी मैं डालना चाहूंगी कि हम जो है वो पूरी की पूरी फार्मिंग कर रहे हैं किसकी, सी वीड की, तो हम सिर्फ जमीन पे जो चीजें हैं उन पे नहीं, हम बाहर की तरफ भी खाद्यान्नों के लिए, और वो भी अच्छी है, अपने दीपों में इसका बहुत स्कोप है कि हम इन सी वीड्स को, तो हम नए नए चीजों को अपने घर में अपनाएं, उनको बनाएं, और ये महिला कर सकती है तो इनका सपोर्ट तो उनके पूरे जो परिवार के अन्य जो सदस्य हैं और बच्चे हैं वो देंगे।
1: आए दिन समाचारों में सुनने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है
0: जी,
1: ग्रीन थ्योरी और जलवायु पर बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं
0: जी,
1: तो क्या इससे कोई समाधान होगा?
0: जी, इसमें क्या है, ग्रीन थिंकिंग को प्रमोट किया गया है कि आप एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने, सबसे बड़ी बात तो आप पेड़ों को लगाए, उस ग्रीन नाम ही उसी से आया कि आप पेड़ों को लगाए और पेड़ों की मदद से वर्षा जल के संवर्धन में ध्यान दे, ये पहली बात, ये सबसे पहले आई, तो एक अलार्म रेज किया गया कि ऐसे ऐसे प्रदेश है, ऐसे ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां पर की ये समस्या आ रही है कि वहां जो है सूखा पड़ रहा है या वहां की जो स्थितियां हैं जलवायु की बहुत कुप्रभाव वहां पड़ रहा है, पेड़ नहीं उग रहे हैं या लोगों का विचार होना चाहिए वो नहीं है, लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कि आर्टिफिशियलिटी ज्यादा है, तो उन सभी चीजों को क्रैश किया जाए, उनमें कमी लाया जाए और तभी ये जो है आगे बढ़ा सकते। ये 2010 में एक्सकर नामक एक वैज्ञानिक ने जो है ये लोगों की बाध्यताओं के बारे में उन्होंने विवेचना की और उन्होंने कहा कि इन चीजों को चेक करने के लिए न्याय, दूसरी बात नागरिकता, सरकारी तंत्र और साथ ही साथ इन सब के बलबूते पे थ्योरी और नीतियां बनाई जाए और वो जो है लॉ के मदद से उसको अपनाने के लिए फोर्स किया जाए, ठीक, विश्व के जो

0: देश जैसे जापान है या कोई डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे लोग बहुत तत्पर हैं कि अपना वातावरण स्वच्छ रखा जाए। अभी तो हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन ऐसे देशों को आप देखिए जो कि फाइन लगा देता है, वो फाइन बड़े बड़े नंबर्स में होते हैं जो कि चुकाना मुश्किल होता है, तो लोग घबराहट की वजह से भी इन चीजों को अपना लेते हैं। तो इन चीजों को लागू करने में जो है ग्रीन पॉलिसी साथ देती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको हम किस स्तर पर लाएं, न्याय के स्तर पर, लोगों को जो सिटीजनशिप है कि इस देश में जाए तो हम आराम से रह सकते हैं और ये देश ऐसा है जो इन चीजों को मानता है, तो वो गर्व महसूस करते हैं, वहां रहने की कोशिश करते हैं। अपने द्वीपों में भी है कि कितने अच्छी तरह से व्यवस्था हो, कॉरपोरेशन हो या म्युनिसिपल बोर्ड हो, वो छोटी छोटी स्तर पर काम करते हैं और इन चीजों का ध्यान रखकर स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
1: ग्रीन रिपोर्टिंग इंडेक्स की बात हम सुनते हैं, ये क्या है?
0: ग्रीन रिपोर्टिंग इंडेक्स जो G20 सम्मेलन हुआ, तो ग्रीन रिपोर्टिंग इंडेक्स में ये सबसे बड़ी बात आई सामने कि सामाजिक पर्यावरणीय जिम्मेदारियां होनी चाहिए। इसमें ग्रीन कंपाइलेंस की बात कही गई है कि इसमें जो है जो असंतुलन हो रहा है, खासकर कार्बन एमिशन जो हो रहा है, कह सकते हैं कि असंतुलन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस ही है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे जो ओजोन डिप्लीशन की बात आई सामने, या सी लेवल रेज की बात सामने आई, या फिर जो जलवायु में गर्मी जो बढ़ने की बात आई, ये सारी जो मुख्य बातें हैं वो इसी की वजह से आई। तो हम कंपाइलेंस नीतियां तय करते हैं और इस ग्रीन रिपोर्टिंग इंडेक्स में विश्व भर के देशों में G20 सम्मेलन में भारत तीसरे स्थान पर आया। और इसके लिए आप खुद देखेंगे कि जो AC वगैरह का इस्तेमाल है अपने अभी भी देश में कम ही हो रहा है, जितना प्रमोशन विश्व के अन्य डेवलप देशों में उसके तुलना में अपने देश में तो कम है। तो इन चीजों को रखते हुए और साथ ही साथ जो अन्य बातें हमने अभी कही उन सबको भी इसमें शामिल करते हुए, जो ग्रीन थ्योरी, ग्रीन पॉलिसी, इन सबको अपनाकर, ग्रीन टेक्नोलॉजी इनको अपनाकर, हमारा देश जो है वो मुक्त हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में।
1: अंत में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
0: खुद अपने को सचेत कीजिए, एक हैबिट डेवलप कर लीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ आप अपने स्वार्थी होकर नहीं हो सकता, आपको अपने आप भी सोचना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक दुष्परिणाम क्या हम अपने पर्यावरण को देते हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुक्त है, हम यही सोचते हैं कि प्रकृति प्रदत्त वो एकदम फ्री आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा कि आपको चाहिए, जरूरत है तो पृथ्वी सब कुछ देगी, तो वैसे ही बात यह है कि आप पहले जब भी कुछ भी कर रहे हो दैनिक जीवन में, जो भी सुबह से शाम तक, उन सब में ये ध्यान रखिए कि क्या आप कहीं पर्यावरण को हर्ट कर रहे हो कि नहीं। तो यही होगा कि वर्ल्ड ओवर के जो देशवासी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, अभी तो पूरे विश्व की जनसंख्या को एक माना जाता है, तो ये लोका समस्ता सुखी न भवंतु, ये पॉलिसी पे चले और सब सुखी रहें, पृथ्वी को स्वच्छ, शांत और बहुत सद्भावपूर्ण तरीके से हम उसमें एक समन्वय बनाए रखने की कोशिश करें, जो हमारा कचरा प्रबंधन है उसको जरूर सफलता के बहुत बड़े स्तर पे पहुंचाए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: कहने का मतलब ये है कि जो भी नीतियां सरकार द्वारा तय की जाती हैं, तो जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उस पर सफलता हासिल करने के लिए एक तरह से आधार बनती हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, तभी हम अपने पर्यावरण को संतुलित रख पाएंगे। डॉक्टर मंजू, आज आप कार्यक्रम में आई, समय दिया आपने, हम समझते हैं कि हमारे श्रोताओं को काफी जानकारी मिली होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी धन्यवाद।
2: पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप डॉक्टर मंजू नायर की वार्ता सुन रहे थे, विषय था संतुलन व बदलता मौसम, भेंट करता थी जयशीला। इस समय आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब कुछ फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए, तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाया है नदीम श्रवण ने और गाया है अलका याग्निक ने।

दूल्हा दुल्हन फिल्म से आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है इंदवर ने और धुन बनाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

उदित नारायण और पूर्णिमा के स्वरों में आइए सुनते हैं हीरो नंबर 1 फिल्म का ये गीत, रचना समीर की और धुन आनंद मिलिंद का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर का लिखा गीत, धुन बनाया है आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम है कूली नंबर 1।

श्रोताओं का अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है।

0: उन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को

0: लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी

0: संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग। 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है। कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा। -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. Another news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipulekh Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. According to the Dharchula administration in Pithoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Takla Court market in Tibet tomorrow. More from our correspondent.
4: Dharchula Subdivisional Magistrate and Trade Officer Ash

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोमांस से। लता मंगेशकर और अमित कुमार के आवाज़ों में गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पुकार से, किशोर कुमार और आशा भोसले के आवाज़ों में गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत दिया है आर.टी. बर्मन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTी। तो ARTी बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTी रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। इंद्वर का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए कुर्बानी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए KS गोपाल कृष्णा का बांसुरी वादन। इसके साथ दिल्ली P सुंदर राजन, मृदंगम पर गुरुवायुर दोराई और घटम पर SA कृष्णमूर्ति ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए राग श्री, जो रूपकम ताल में निबद्ध है।

0: अगला राग सुनिए हरिकाम भोजरी, जो आदि ताल में निबद्ध है इस अंतराल के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में KS गोपाल कृष्णा का बांसुरी वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10 बजे है। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

कार्यक्रम का पहला एसएमएस भेजा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र जय नारायण तरुण प्रतीक चौहान ने। आइए इनकी पसंद का सुनते हैं पहचान फिल्म का ये गीत।

रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित और बेवी गर्वे का एसएमएस हमें आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। लीजिए सुनिए इनकी पसंद का संगम फिल्म का ये गीत।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: Nexa. हिरण नगरी सेक्टर 4 से सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित, कार्तिक, सानू, नमिता और संजू यादव सुनना चाहते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्ता की आवाज़ों में श्रोताओं अब लीजिए सुनिए सीआईडी फिल्म का गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से जीना संदीप मनोहर धर्मवीर कमल और संजय ने।

अगला एसएमएस हमें भेजा है बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला दामोदर सुमेंद्र कुमार ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं संतोष फिल्म का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश हमें की है हैवलॉक से मनीष ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं जॉली LLB 2 फिल्म का ये गीत।

लव इन टोक्यो फिल्म के गीत के लिए हमें एसएमएस भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन देवी जागेश डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

प्रेमनगर से अगला एसएमएस हमें आया है कनीषा का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं रन फिल्म का ये गीत।

अगला एसएमएस हमें आया है कार निकोबार से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में मन फिल्म का ये गीत।

अगला एसएमएस हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल ईरान और पूजा ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत।

हीर राजा हीर रांझा फिल्म से सुनिए अगला गीत जिसकी फरमाइश हमें की है रमेश मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी ने कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1314वीं कड़ी।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरि की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800044055 है हमारा IVRS नंबर और

0: audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी।

0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
1: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
2: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
3: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
4: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
2: गांधी

0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
2: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
3: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
3: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
3: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
3: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
3: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
3: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
3: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
3: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
3: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
3: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
3: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
3: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
1: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
1: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
2: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास

0: कास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1314वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:28 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म दिल आखिर दिल है से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीतकार हैं नश्क लालपुरी और संगीतकार हैं खयाम।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's more

0: faster because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank. So you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तैयार ये है राज मेहदी अली खान का लिखा, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अनपढ़।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, धूल का फूल, इस फिल्म से। साहिर का लिखा गीत जिसकी तर्ज बनाई एन दत्ता ने, गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर।

भावना इस फिल्म से लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। इस गीत को लिखा कैफ़ी आज़मी ने, वह संगीत बप्पी लहरी का है।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है श्री 420।

0: दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता।
1: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए साजन फिल्म से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, पेश है तेलुगु कार्यक्रम।
1: ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం ప్రియమైన శ్రోతలకు నమస్కారం.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की

0: नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution.

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में ए हरिहरन का गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं श्रोताओं, अब प्रस्तुत होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें की है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर संगीता, अंजलि कारवा, बाला साहेब, राम निवास धनजय ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये गीत।

भेजा है दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन ने मेरठ से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं लगान फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है मोहम्मद यासीन अनजान, हसन बाबू, मिश्रा बेबी, चाहत और सादिया। ये श्रोता सुनना चाहते हैं गाइड फिल्म का ये गीत।

वो कौन थी हसीना फिल्म से सुनिए अगला फरमाइशी गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक और लौकिक चौंसलिया ने उत्तर प्रदेश से।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए अगला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है साहिब बहादुर। इस गीत को सुनना चाहते हैं रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट राजस्थान से।
1: ओए तौबा तौबा तौबा,

अजब है ये दुनिया गजब है जमाना के बुलबुल है चुप गाए उल्लू तराना। सुनो है बिकाऊ खुदा की खुदाई किसी एक समगलर ने बोली लगाई तौबा तौबा।

आंख में सुरमा कहां, होंठ पर पान कहां, वो खड़कती हुई सलवार मेरी जान कहां, वो दुपट्टा न रहा, वो गरारा न रहा।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत सुनिए, किशोर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के। इस गीत को सुनना चाहते हैं सुरेश, किरण लव्या और एस के पप्पी ग्वालियर से।

हम है राही प्यार के इस फिल्म के गीत के साथ ही आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, दोपहर के 2 बजने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
1: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
2: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub and spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world.

0: लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने यह बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा

0: अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के

0: दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
2: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है इतना हूं।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 3:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब कुछ आंखें जागकर अपने कल की तस्वीर बुन रही होती है। इन्हीं को तो सपने कहते हैं। दोस्तों, सिर्फ वो सपने सच नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। असली सपने वो है जो हमें सोने ही ना दें।

मेरी आँखों में हजारों सपने, सपने में अपने अपनों में ही देखूं सपने, अपने बन गए बेगाने अब बेगाने लगे अपने, किसी से क्या रज देखूं उन्हें जियूं उन्हें, जो सपने कभी ना बन सके अपने, मेरी आँखों में हजारों सपने।

ये बहारें और नगमे मुझको बहलाते नहीं, मस्त अपनी दुनिया में गुत्ती सुलझाते नहीं। क्या वजह मुंडेर पर पक्षी भी अब आते नहीं, धुंद बिखरेगी कभी तो रास्ता दिख जाएगा, ये भी मुमकिन है वो बीता हुआ पल लौट आएगा।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिन्ना मैंने रोकर हमांग इंग्रजी तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर है 684 किलोहर्ट्स रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंग हराब मिनका तलोन ही रने अन्य न हिस्टोरिकल अचीवमेंट ने इनगम निकोबार डिस्ट्रिक्ट है इन ही ए निकोबार ट्राइबल कम्युनिटी द मिस शानदार सेंट्रिक लमक तिनगम द पोइमिंग विलेज खा निकोबार न रने न आर्टिस्ट न इनगम निकोबार ट्राइबल कम्युनिटी न फर्स्ट इंडिविजुअल तिंगन तंगम उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार न लमक त इनगम संगीत नाटक अकेडमी तमिच एंडन में यंग पार्टिसिपेट न इनगम फील्डम म्यूजिक डांस थिएटर तमिने फोक्स तमिने ट्राइबल आर्ट्स इनरे गम अवार्ड वाहे न अनाउंस न्यू तम संगीत नाटक एकेडमी इन गम समय 2025 इन मने तरुल कांगन कैटेगरी फोक डांस अंडमान निकोबार आइलैंड न लमा इन मिस शानदार सेंट्रिक न द लगतकु इक 2006 अंगा न केतर न इन गम फोक डांस टच इंटरनेट कई निरनाई ता फोल अंगा न कब सरन इनरे नंग कीरियम न इन गम निकोबारी फोक डांस As a leader, anga na ingam folk dance ngaj katil ngaj anga na keku tangam award Bismillah Khan Yuva Puraskar. Takirang na achievement na incho elmat hi ay tribal ayat ko ay hakun ngamine tinrikendre po okol na anu inkahahi ramang ingam Deputy Commissioner Nicobar District angi minkah talon hi. Hoy, tahik sin hangaran mene chog mahawat karen lakal hoy ne kun panam hi. Jammu may bandar da Diklipur. MV Strait Island, Chu Mai Bandar the Diklipur Rip the Hurage I the Sat Koinro the Lapuh Nalaknya Phoenix Pageti. Machava Nip the Nerana Sat Alango Chinget I the Sat Koinro the Lapuh Narang Diklipur Sik Mai Bandar Mingam Chok El Talakarena Chusri Vijaypuram. MV Bharat Sima, Chu Mai Bandar the Diklipur Rip the Nerana Machutra Alango Chinget I the Haver Koinro the Hatam Nalaknya Hedawaf. Machava Nip the Luyanai Alango Chinget I the Net Koinro the Lasakaman Narang Diklipur Sik Mai Bandar Mingam Chok El Talakare Najusri Vijaypuram. Chamu Little Andaman Hek Cho MV Bharat Sima Chu Little Andaman Ip Tahuraj Ita Machutra Kainro Tahatam Nalaknya Head Waf Ngachawa Nip Ta Nerana Sat Alango Chinget Ita Hever Kainro Talapuhu Narang Little Andaman Najusri Vijaypuram MV Kalikat MV Bharat Sima Chu Little Andaman Ip Ta Nerana Hever Alango Chinget Ita Hever Kainro Talapuhu Nalaknya Head Waf Ngach Ip He Ita Machutra Kainro Tahatam Narang Little Andaman Najusri Vijaypuram MV Kalikat Chu Little Andaman Ip Ta Luyana Alango Chinget Ita Majutra Kainro Tahatam Nalaknya Hadawaf Ngachawa Nipranne Ala Ab Chulai Chinget Ita Hevra Kainro Talapuhu Narang Little Andaman Najusri Vijaypuram MV Kalikat Chu Little Andaman Dakar Nikobar Ip Ta Nerana Hevra Alango Chinget Ita Sat Kainro Talapuhu Nalaknya Hadawaf Ngachawa Nip Ta Nerana Majutra Alango Chinget Ita Fen Kainro Talaharap Narang Ka Nikobar Sik Little Andaman An Mingam Chong El Talagare Najusri Vijaypuram Hek and Min MV Kalikat, Naju Little Anaman the Kar Nikobar Ip the Lui Allah Chulai Chinget, it the Sat Kainro the Lapuhu Nalaknya, Head of Wav, Nachavan.

0: hoi hanga tel ngang ina sintamu hek in hore chang rong ita ka sate ita ka oxin rong ita lapu hu nga yen.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं और प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तनकारी क्षमता रखता है, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति। चाहे आप यात्रा कर रहे हो, सैर कर रहे हो या बस शांति के आपके पल का आनंद ले रहे हो, यह जानने के लिए एक यात्रा शुरू करें कि तनाव को प्रबंधित करने में माइंडफुलनेस कैसे गेम चेंजर हो सकती है। फ्रेंड्स, इन दिनों जीवन वास्तव में एक अराजक भवंडर जैसा महसूस हो सकता है ना? आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ अक्सर तनाव के साथ साथ आती है, जो रोजमर्रा की परेशानियों में हमारा निरंतर साथी है, लेकिन यह आशा की कारण है। माइंडफुलनेस दर्ज करें, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण जो आपके अनुभव को बदलने का क्षमता रखता है। ऐसा एक शांत, अधिक केंद्रित अस्तित्व के लिए अपने टिकट के रूप में कल्पना करें। दोस्तों, आपको आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में ये क्या है। खैर, माइंडफुलनेस का मतलब है पल में मौजूद रहना, टू लिव इन द मोमेंट। अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना, ये तनाव और चिंता के चुंगुल से मुक्त होकर वर्तमान को अपनाने का एक सचेत प्रयास है। ये प्रथा प्राचीन परंपराओं में निहित है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसने हमारा तेज गति वाले जीवन के लिए एक औषधि के रूप में अपनी जगह बना ली। जैसे कि हम माइंडफुलनेस के जादू को उजागर कर रहे हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये तनाव को कम करने में कैसे अद्भुत काम करता है। हमारे विचारों के बारे में गैर निर्णयात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करके माइंडफुलनेस हमें तनावों का निरीक्षण करने और उसमें अलग होने की अनुमति देती है। ये एक मानसिक स्थान को बनाने जैसी, जो हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देती है और जोनिंग आउट के बारे में नहीं है। ये आपके अनुभवों को एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ ट्यून करने के बारे में है। पहला सवाल आता है कि माइंडफुलनेस है क्या? क्या है? कोई मेडिटेशन है जिसमें बैठकर कई मिनट या घंटे तक ध्यान लगाना? आपको बता दें कि माइंडफुलनेस ध्यान का एक छोटा रूप है, इतना छोटा कि आपको इसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होता है। बस ये 5 मिनट अपने लिए रोज निकालें और ऐसे समय पर निकालें जब आप शांत मन यानी पीसफुल माइंड से सिर्फ अपने साथ बैठ सके। ये समय सोने से ठीक पहले, बिफोर बेड टाइम, या फिर सुबह जागने के तुरंत बाद का समय भी हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर इन समय पर व्यक्ति का मन शांत होता है और वो किसी हड़बड़ाहट नॉट इन अ हरी में होता है। यदि आपके साथ ये समय संभव नहीं होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं। आप शांत होकर पालती लगाकर यानी सुखासन में बैठ जाएं, आंखें धीरे धीरे से बंद करें, मन शांत करें। इसके लिए गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। बैठने के समय अपनी कमर को एकदम सीधा रखें। सांस भरते समय पेट फुलाएं और सांस छोड़ते समय पेट अंदर खींच लें। इस दौरान खुद को शांत

शांत रखें और कोई हड़बड़ी न करें। अपने आसपास की हवा, ऊर्जा, आवाज सभी को अनुभव करें। मतलब खुद को शांत रखते हुए इस बात पर ध्यान देना है कि आपके चारों ओर क्या घट रहा है। जो घट रहा है उसे सिर्फ अनुभव करना है, उसके बारे में अपना कोई विचार नहीं बनाना है, ना ही इन आवाजों से कोई जुड़ाव महसूस करना है। फिर चाहे वो बच्चे के रोने की आवाज हो या हंसने की या चिड़िया के चहकाने की, इन आवाजों को सिर्फ सुनना है। खुद को इनसे अलग रखते हुए आपका ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए। 3 से 4 मिनट ऐसा करने के बाद आप चाहे तो अगले 1 मिनट अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए रखें। ध्यान दें, आपको अपनी किसी आदत को सुधारने ही, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है, दूसरों को कोई दुख न हो और आपका भी कोई नुकसान न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करें। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों शांत होते हैं। खास तौर पर जब आप इस एक्सरसाइज को सुबह के समय करते हैं तो पूरा दिन बहुत शांत और आरामदायक बीतता है। आपको अपने निर्णय लेने में आसानी होती है। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को ऑफिस में थोड़ा समय निकालकर कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और अपने अंदर के नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करना है। माइंडफुलनेस की नियमता प्रैक्टिस से मन शांत होता है, गुस्से पर नियंत्रण रहता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, ऊर्जा का विकास होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप अधिक खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो ये है कि माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या है और कैसे होता है। दरअसल दोस्तों, माइंडफुलनेस ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाएं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ये एक तरह से ध्यान ही है, बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस में हम जिस लम्हा जहां होते हैं अपना पूरा ध्यान वही लगाना होता है और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करना और जीना है। माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल इसके जरिए हम मौजूद लम्हे में जुड़ सकते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाती है कि इस लम्हे ऐसा होता है तो क्या होता है, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि वैसा नहीं हुआ आदि। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियां भी हमें परेशान नहीं करती है। हमें मान लेना चाहिए कि हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना सकते हैं। अपने रिएक्शन या प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इसे धीरे धीरे हम स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस के कई फायदे हैं दोस्तों। तनाव से मुक्ति, याद करने की शक्ति में इजाफा, एकाग्रता का बढ़ना, भावनात्मक स्टेबिलिटी होना, शांति और खुशी का एहसास बढ़ना, हाइपर एक्टिविटी कम होना, गुस्सा कम आना, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ना, फैसले लेने की क्षमता में इजाफा, नींद का बेहतर होना। माइंडफुलनेस थेरेपी को करना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप जिस वक्त जहां हो पूरी तरह वही ध्यान लगाना होता है। इसके लिए कमर सीधा रखकर कुर्सी पर बैठे या फिर आराम से नीचे बैठ सकते हैं। आप सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं, अपना ध्यान सांस पर लगाए, अपने अंदर आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, सहज रूप से महसूस करें, सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें, एक हाथ पेट पर रखें और गौर करें कि जब सांस ले तो पेट बाहर की तरफ जाए और जब सांस छोड़ते तो पेट अंदर की तरफ जाए। ये भी गौर कर सकते हैं कि सांस ठंडी या गर्म है। जब भी ध्यान सांस से हटकर इधर उधर जाए, घबराए नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। हमारा मन बहुत चंचल है और एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, लेकिन भटकावा के बाद फिर से अपने मन को सांस पर केंद्रित करना है। आप सांस के प्रति सजग रहे और जब भी मन भटके उसे लौटकर फिर से सांस पर लेकर आए। ऐसा करते हुए सांस सामान्यता तरीका से ही ले, सांस गहरी न ले। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस को इस क्रमिक विकास के रूप में सोचे, न कि अंतिम रेखा तक पहुंचने की दौड़ के रूप में। ये इसे आपके जीवन

0: में धीरे धीरे इस तरह से बुनने के बारे में है जो आपके लिए बिल्कुल सही लगता है, इसीलिए इसे एक बड़ा उत्पादन बनाने के बारे में तनाव न ले, इसे करने दे। सचेतनता को अपने जीवन में सहजता से प्रवेश देने के लिए तैयार रहे, इसे सरल और तनाव मुक्त रखे। प्रिय श्रोताओं, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, सचेतनता का आजीवन यात्रा है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रता और लचीले आत्मा के करीब लाता है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रित और लचीले आत्म के करीब लाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वयं वर्तमान क्षणों में व्यस्त रहे और जब तक हम दोबारा न मिले आपके दिन सचेतन अनुभवों और आंतरिक शांति से भरे रहे। अलविदा और अच्छा ख्याल रखना। नमस्कार, आपका चेतन।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण। आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम। शाम 5 आप सुनेंगे तमिल कार्यक्रम। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। संध्या 6 किसानवाणी कार्यक्रम में डॉक्टर वाई रामाकृष्णा से की गई बातचीत आप सुन सकेंगे। विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। शाम के 6:30 पर होगा महफिले कवाली कार्यक्रम। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 7:20 पर। 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रिका युवा संसार।

फिल्मी गीतों का लुत्फ़ लीजिए रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर कंट्री वाइड, रात 9:45 पर इनसाइट्स और रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुन पाएंगे। जबकि FM 100.9 MHz पर रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार। तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा सुपारी में फसल सुरक्षा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। छः बजकर 15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का शीर्षक होगा जमाना। रामचरित मानस गान की 281वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशभक्ति गीत सुनिए 6:40 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी एवं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जनसूचनाएँ। 7:15 पर देश रागनी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुनिए फिल्मी गीत। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे चंदन दास, मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में

प्रभा आत्रे का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन सकेंगे। संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1315वीं कड़ी। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे निकोबारी कार्यक्रम। तेलुगु कार्यक्रम का समय होगा 12:12। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा 12:12 पर। दोपहर 1:10 पर महफिले कवाली में कवाल होंगे जाहिद नाजा कवाल। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा 12:01 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज व कल के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए शरफरोश फिल्म का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, बोल समीर की तथा धुन बनाई है जतिन ललित ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए प्यार का साया फिल्म का गीत। गीत रचना समीर की तथा स्वर दिया है विजय बेनेडिक्ट ने।

हर दिल जो प्यार करेगा। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वणकम तमिल मुदम वणकम नेर्गले।

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान भाइयों, हृदय पवित्र रखो। इंसान तो क्या, भगवान भी तुम्हारे दिल में रहने लगेंगे। जहां मन में कपट नहीं होता, वहां कृपा अपने आप उतर कर आती है। साफ दिल वाले इंसान को दुनिया भले ही देर से समझे, पर ऊपर वाला उसे हमेशा अपने सबसे करीब रखता है। आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए एक समूह में कितनी मछलियां होती हैं। साथियों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है कि मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए एक समूह में कितनी मछलियां होती हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज हम बात करेंगे स्वस्थ नींद के लिए योग के लाभ के संदर्भ में। योग स्वस्थ और गहरी नींद प्राप्त करने का एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय है। नियमित योगाभ्यास शरीर और मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है तथा नींद की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। स्वस्थ नींद लेने के लिए योग से तनाव और चिंता में कमी होती है। योग मन को शांत करके मानसिक तनाव को कम करता है। ये तंत्रिका तंत्र को भी संतुलित करता है। योग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे शरीर विश्राम की अवस्था में चला जाता है। हार्मोन संतुलन को भी योग मेलेटिन जैसे नींद से संबंधित हार्मोन के स्त्राव में सहायता करता है। शारीरिक थकान और विश्राम, हल्के योगासन मांसपेशियों को आराम देते हैं और शरीर को नींद के लिए तैयार करते हैं। इससे शारीरिक थकान दूर होती है और शरीर को विश्राम मिलता है। अनिद्रा में योग का नियमित अभ्यास करने से सोने में लगने वाला समय कम हो सकता है और नींद गहरी आती है। साथियों, स्वस्थ नींद के लिए उपयोगी योगासन है शवासन, बलासन, विपरीत करनी, पश्चिमोत्तासन, सुप्त बुद्ध कोणासन, प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और गहरी श्वास। अतः साथियों, नियमित योगा प्राणायाम और ध्यान अभ्यास स्वस्थ नींद की आदत को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न केवल नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। सोने से 20 या 30 मिनट पहले हल्के योगासन और प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। साथियों, ये तो थी कुछ बातें स्वस्थ नींद और योग से संबंधित, लेकिन अब हम कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आजकल खेत बचाओ अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई रामाकृष्णा जी से। तो चलिए साथियों, इस बातचीत के माध्यम से करते हैं इनसे मुलाकात।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब।
5: नमस्ते
4: डॉक्टर साहब। जैसा कि हम जान रहे हैं, हमारे किसान साथियों को भी पता होगा कि 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहे हैं, और इसी विषय पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये खेत बचाओ अभियान क्या है और इसे पूरे देश में क्यों शुरू किया गया है।
5: खेत बचाओ अभियान ने बताया कि 1 से 30 जून तक चल रहा है।

0: इसका एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस वाइड प्रोग्राम चल रहा है।
1: जी
0: इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसे सॉइल टेस्ट बेस फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए, उर्वरक उर्वरक खाद जैसे कहते हैं,
1: जी
0: और बैलेंस यूज्ड,
1: जी
0: यानी जिस सारे मात्र एक, अब किसान जो है एक दो फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, लेकिन बैलेंस यूज्ड उसी को देना चाहिए, जैसे उसको टेस्ट बेस सॉइल टेस्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए।
1: जी
0: तो अभी जैसे हम कई बार टेस्ट कर कई रिपोर्ट लेते हैं, तो उसमें पता चलता है कि किसान जो है पूरी बैलेंस वे में नहीं कर रहे हैं अपने, जैसे उनको जैसे जो जो फर्टिलाइज़र मिलता है जैसे उनको मिलता है वैसे यूज़ कर रहे हैं, उसे ना होते हुए एक बैलेंस्ड वे में एक कम मात्रा में यूज़ करें और कैसे यूज़ करें, इसका प्रचार के लिए दिया जाता है।
1: जी
0: तो इसका प्रयोग का मेजर ये भी है कि इसे सॉइल जो ख़राब हो रहा है, मिट्टी
1: जी
0: हमारा जो सॉइल डिक्लाइन, फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, इससे क्या होगा कि अभी जब फर्टिलिटी डिक्लाइन हो तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जैसा जो पैदावार करने की जो खपत है वो भी बढ़ जाएगी। तो
1: जी
0: इससे इस कारण वजह से और इन्वायरमेंट अनेक कंसल्ट है, क्योंकि इम्बैलेंस जब हो जाता है इन्वायरमेंट में तो खेती बाड़ी में दिक्कत आ जाती है।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये अभियान पूरे महीने चल रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: उसके उद्देश्य ये है कि किसानों को बताएं, जैसे ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना और ये जैसा इंटरेक्शन करना, कि उनको समझाना है कि ये आप जो क्या कर रहे हैं, आपके जो सॉइल टेस्ट बेस जैसे रिपोर्ट आती है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले सॉइल टेस्ट रिपोर्ट देते हैं, उसको आप समझिए वो क्यों दिया जाता है, हर 3 साल में देते हैं, आपका जो भूमि को परीक्षण करिए, जैसे डॉक्टर आपका शरीर को जांचता है उनकी उसी तरह उनके जो आपकी सॉइल को जांच के उसको रिपोर्ट देते हैं, जो चीज़ कमी है उसको आप पूर्ति कीजिए,
1: जी
0: जो उसमें है आपको उसमें दिखाया जाता है पर्याप्त मात्रा में उसमें आप ना डालें,
1: जी
0: इससे क्या होगा कि आपका लागत भी कम होगा और दूसरा है कि आपका प्रदूषण भी नहीं
1: जी तो
0: होगा।
1: जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा सॉइल टेस्टिंग, तो ये सॉइल टेस्टिंग हमारे जो किसान भाई वो कहाँ जाकर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं
0: सॉइल
1: मतलब?
0: टेस्टिंग जो है हमारे कृषि विभाग के सारे डिपो में दिया जा सकता है, वो आप रिपोर्ट करने से आत्मा के लोग, सॉइल डिपो के लोग सब आते हैं
1: जी
0: और आपका सॉइल का GPS डाटा लेते हैं और सॉइल का अभी आप फोटो लेके आपको उसका बाद उस सॉइल को सेंटर लैब ले जाता है हेडो में, और वो एनालिसिस करके कुछ दिन बाद रिपोर्ट देते हैं
1: देते
0: आपको।
1: हैं जी। जैसे मेरे मन में एक सवाल उठकर आया है कि हमारे जो किसान साथी हैं वो जैविक खाद का उपयोग करते हैं, और हो सकता है कि उनका जो ज़मीन है वो उतनी उपजाऊ ना हो, अम्लीय मिट्टी हो या क्षारीय मिट्टी हो, एसिड ज़्यादा हो, तब भी क्या जैविक खाद डालने पर वो सब ठीक हो जाता है या फिर उनको अलग से ही उपचार करना पड़ता है?
0: जैसे आप बोले एसिड सॉइल, जैसा यहाँ पर आप मुख्यतः देखेंगे तो कहीं कहीं 5.7 ऐसे ज़्यादातर सॉइल में मिलती है, जो रिपोर्ट हमने साथ में एग्रीकल्चर के साथ में कैंपेन किया किसानों को देख के, मैं अपने जो अंदाज़ में कह रहा हूँ,
1: जी
0: तो जैसे एसिड सॉइल है इसे जैविक खाद से ठीक हो सकती है तो हाँ, और उसमें अगर आप उसको ऐड ज़्यादा उसको जल्दी करना चाहते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर लाइम भी होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ऑर्गेनिक में ही आता है।
1: जी
0: और जब आप जो भी ऑर्गेनिक खाद जैसा मान जैसे गोबर का खाद हो गया, ये जो प्लांट बेस होता है उसको जब कंपोस्ट करके जैसे पत्तियां लेके हरी खाद
1: जी
0: लेके जब
1: वर्मी
0: उसको
1: कंपोस्टिंग करके
0: वर्मी
1: भी।
0: कंपोस्ट भी है, वर्मी कंपोस्ट तो डीले है कॉस्टली है लेकिन वर्मी कंपोस्ट का भी अच्छा इफेक्ट होता है, इसको जब हम डालते हैं तो ये जो सॉइल रिएक्शन की वजह से ये न्यूट्रलाइज में आता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये जो आयकर और कैरी विभाग है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस अभियान में ये कैसे भाग ले रहे हैं?
0: ये अभी जो किसान खेती बचाओ अभियान है हमारे ICAR कैरी जो बातों बस्ती में है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, UT आत्मा है, कृषि विज्ञान केंद्र, तीनों कृषि विज्ञान केंद्र निकोबार, साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, तीनों कृषि विज्ञान केंद्र इन ये सामूहिक मिल के करते हैं। इसके साथ कई और दूसरे विभाग भी आए हैं, CIPMC और इवन कुछ दूसरे विभाग भी है जो सहयोग कर रहे हैं इसमें, ये हम एक मिल के एक इस अभियान में भाग ले कर रहे हैं ताकि किसानों को

0: जी, तो अब डॉक्टर साहब हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं। टिकाऊ कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है?
1: अभी देखिए, कृषि का जो मुख्य मुद्दा है भूमि, उसके बाद पानी, उसकी जो देने
0: जी
1: की है। अब भूमि अच्छा रहेगा यानी संतुलित रहेगा तो किसान को अपने यहाँ पैदावार अच्छे से आ जाएगी। तो हमें पैदावार क्या है, आर्टिफिशियल कंडीशन है जिसमें हमें अपने जो जो फसल हमें चाहिए वो किसान उगाता है, नहीं उसे जैसे जंगल है तो जो भी है वो अपने आप से तो पोषण तक तो आता है, जो भी
0: जी
1: जंगल में अच्छे हरा भरा रहता है।
0: जी
1: तो इसका जो क्वालिटी अगर हम अगर मेंटेन करेंगे तो हमें लंबे समय तक, अपने लंबे समय क्या पूरे कई वर्षों तक हमें इसके हमें साथ देगा, अच्छी पैदावार देंगे
0: जी
1: जिससे हमें अपने आय भी हो, इन्वायरमेंट भी अच्छे मेंटेन कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल। इन द्वीपों में जो किसान हैं उनको कौन सी मिट्टी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
1: मिट्टी संबंधित तो पहली तो एक है कि सॉइल एसिडिटी,
0: जी
1: सॉइल जैसे आप बोले हैं
0: जी
1: तो सॉइल एसिडिटी तो एसिड सॉइल है, इसमें आप उसको रेक्टिफाई करना है तो जैसा एग्रीकल्चर लाइन डाल सकते हैं। दूसरा है कि जो जो भी फार्मयार्ड मैन्योर, जो फार्मयार्ड मैन्योर तो कुछ भी खेती हो सकती है, जब पुराना खराब वाली पुआल घास इसको आपको सड़ा थोड़ा सड़ा के वो उसको वापस डालेंगे तो खेत में, तो स्लो धीरे से हमारा जो है पीएच जो है वो नॉर्मल होती
0: जी तो डॉक्टर साहब, अभी जो रासायनिक उर्वरक हैं
1: है।
0: जिनको हम निरंतर हमारे किसान साथी उपयोग करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को ये कैसे प्रभावित करता है?
1: जैसे रासायनिक खाद अगर हम लगातार ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो इसे यूरिया डालते हैं तो इससे भी कई जो प्रकार के हमारा जो अंडर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सॉइल
0: जी
1: माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे, और भी ऐसा एक सिंपल सा है फर्टिलिटी मेजर करने का है, एर्थवॉर्म्स केचुआ,
0: जी
1: तो वो केचुआ जो है अगर उसकी उसमें भी बहुत असर करता है। जब माइक्रो ऑर्गन जब जैसे हम यूरिया ही ज़्यादा डालते हैं
0: जी
1: तो सॉइल ऑर्गन कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कम हो जाता है,
0: जी
1: और कंटिन्यूसली हम उसको जब भरपाई नहीं करते हैं तो वो हमारा सॉइल धीरे धीरे जो डिग्रेड होता है, सख्त हो जाना, सोरा रिएक्शन कम हो जाना,
0: जी
1: इससे पूरे लॉन्ग टर्म में खराब। एक्चुअली रासायनिक खाद जो है उसे हमें तभी यूज़ करना है जब हम उसकी उसकी जो उपयोग उसको जब डिफिशेंसी हो, जब कम लगे तब
0: जी
1: हमें यूज़ करना है। अभी क्या हो जाता है कि हम डायरेक्टली उसी पर निर्भर है और हम जो है ऑर्गेनिक खाद कभी भी इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो इससे क्या होगा कि अभी दे पिछले 2-3 दशक में से हमारा जो और जिसे ऑर्गेनिक कार्बन हम नहीं दे रहे हैं इस वजह से ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में हमारा जो खेती में वो कम हो चुका है, और ऐसे ही लगातार चलता रहा तो ये मरुभूमि बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
0: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता आपने बताई कि घटती जा रही है, तो किन संकेतों से हम इसे पहचान सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता है वो घट रही है या इनफर्टाइल हो रहा है ज़मीन?
1: अभी जो उर्वरकता कम हो रही है, जैसा मान लीजिए एक सिंपल सा मैं किसान लेवल में बता रहा हूँ कि आज आपने 1 केजी 1 मीटर में डाला है खाद, कोई भी खाद हो बता रहा हूँ, तो उस खाद का कितना आपको प्रोडक्टिविटी आती है। मान लीजिए आप किसी भी जगह चावल में आप दे लीजिए पर मीटर स्क्वायर में कितना आ रही है, और चाहे सब्जियों में ले लीजिए आप, कितने साल बाद वो इतना ही आता रहेगा, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आपको जो आपका प्रोडक्टिविटी कैसे ट्रेंड में जा रही है करके।
0: जी
1: अगर आप उसको साथ अगर यही अगर रासायनिक खाद के साथ अगर आप जैविक खाद भी डालें तो वो जो ट्रेंड है घटने वाली वो शायद ना हो या मेंटेन रहेगा प्रोडक्टिविटी।
0: जी
1: तो ये एक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहाँ पे रासायनिक खाद और जैविक खाद दोनों का समाई उपयोग करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने पहले तो हमें बताया है कि हमें मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए और इसके अहमियत को भी आपने बताया है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि मृदा परीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए?
1: मृदा परिषद जो हाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 3 साल में एक बार कंटिन्यूसली करा रही है,
0: जी
1: तो इसका जो वैलिडिटी ऐसे मान के चलते हैं कि तीसरा बार में हो जाता है, क्योंकि आपने 3 साल में 3 फसल या 6 फसल ले सकते हैं, उसके बाद जो जो उसके ट्रेंड आती है जो वैल्यू आती है उसे हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा घट रहा है, जैसा रिएक्शन में चेंज हुआ है या ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज हुआ है, उसमें फॉस्फोरस की मात्रा,

0: इसमें हमें मालूम हो जाए कि हम कितना ढाले हैं और कितना नुकसान हुआ है, या पानी में बह गया, या किसी किसी रूप में लॉस हुआ है, गेन हुआ है, वही हमें एक अकाउंट मिल जाएगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसीलिए हमें मृदा परीक्षण करना चाहिए हमेशा।
1: तो ये जो मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट होती है, इसमें क्या जानकारी प्रदान की जाती है?
0: सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में मान लीजिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है 13 टाइप का पैरामीटर देखते हैं,
1: जी
0: जैसा PH है, EC है, कार्बन कंटेंट, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश अवेलेबल देखते हैं, उसके बाद
1: जी
0: जिंक, बोरान और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट देखते हैं। तो 13 पैरामीटर्स हैं इनके साथ, इवन कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या अभी उपलब्ध है, हमारी सॉइल जो सैंपल लिया है, और
1: जी
0: हमें इसे कैसे इसको सही करना है या रेक्टिफाई करना है, इससे मालूम हो
1: जी
0: जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने सैंपल की बात की तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किसान साथी जो हैं, कहाँ से सैंपल उठाकर उनको कलेक्ट करना चाहिए?
0: अभी मूल था, अभी देखिए तो डिपार्टमेंट वाले सहयोग अच्छा से कर रहे हैं,
1: जी
0: वही फील्ड में आप बता देंगे, अगर कसाइल नहीं हुआ है वो आके ही कर लेते हैं, वही सहायता कर लेते हैं।
1: जी
0: नहीं होने से अगर सॉइल सैंपल लेना है, अगर आपको ही लेना है, तो एक एक्चुअली आपके जो जितना 2-3 हेक्टर है उसको 20 सैंपल करीब करीब लेना होगा। और उसको क्या है कि आपको रैंडमली फातू से वी शेप काट के,
1: जी
0: जो हमारे जो किसान भाई को होता है फातू, तो उसको एक स्लाइस लेके धीरे धीरे करे इकट्ठा करते हैं।
1: जी
0: अगर इकट्ठा करते हैं 20 सैंपल लेते हैं, और उसका बाद में उसे हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद फिर सैंपल आधा आधा बांट के काट निकालते रहते हैं,
1: जी
0: तो करीब करीब लगभग 700 से 1 kg तक उसको लास्ट में लेते हैं, और उसको सैंपल को एक कपड़े में बांध के उसको किसान का जो विवरण लिख के उसे आप दे सकते हैं। इसे वहाँ नहीं लेना, जैसा पेड़ के बगल जड़ जहाँ है वहाँ नहीं लेते हैं, कुछ जैसा जहाँ पे खाद है नहीं तो और उर्वरक है उस जगह का नहीं लेते हैं,
1: जी
0: तो इसे क्या वैल्यू चेंज होने का चांस रहता है।
1: जी और मिट्टी गीली होनी चाहिए या फिर भुरभुरी होनी चाहिए,
0: ना
1: कैसी
0: ना,
1: होनी चाहिए?
0: अभी गीली जैसा अभी बारिश है तो ऐसे नहीं लेते
1: जी
0: हैं, ऐसा भी नहीं, जो नॉर्मल सूखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको सुखाना धूप में नहीं होता है, इसे हमें शेड में जैसा छाँव में रख के सुखाते हैं, और छाँव में रख के सुखाने के बाद लेते हैं इसको।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अब हम उर्वरक प्रबंधन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग से क्या तात्पर्य है?
0: जैसा संतुलित आप कर रहे हैं, तो जैसे देखिए अभी कोई भी पेड़ हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, तो उसमें एक लगभग एक तरह का अब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है। जैसा अभी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, इनका एक अपना संतुलित होता है, एक
1: जी
0: रेशियो उनका होता है, तो उस रेशियो का अवेलेबिलिटी उसमें सुनिश्चित करना चाहिए भूमि में,
1: जी
0: ताकि उसे आप प्लांट को मिले। और जो बैलेंस हम इसलिए बोलते हैं कि इम्बैलेंस का, कि अभी किसान जो है एक दो ही खाद पे ज़्यादा जोर दे रहा है, यूरिया हो या DAP हो। DAP में दो ही एलिमेंट होता है, एक अमोनिया सोर्स होता है और एक फॉस्फोरस सोर्स का, दो एलिमेंट का ही होता है,
1: जी
0: और यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन का ही सोर्स होता है।
1: जी
0: तो इस वजह से क्या है कि हम खाली इसी जब जब दे ही फर्टिलाइज़र हम देते हैं, तो पोटाश हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के जो है मात्रा सही में भी उतनी पर्याप्त नहीं होती है,
1: जी
0: जो ऐसा 1 साल 2 साल कुछ साल बाद वहाँ भी एक डिपॉजिट जैसा ही है, कुछ साल जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें हम लोग को फिर उसके बाद प्लांट में डिफिशेंसी सिम्टम्स दिखने लग जाता है, स्लोली प्रोडक्शन कम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर रामाकृष्णा जी, अब हम खेत बचाओ अभियान के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे कि खेत बचाओ अभियान के तहत आयकर और कैरी द्वारा किन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है?
0: अभी गतिविधि हम जैसे हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, आत्मा के टीम के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र का जो मैं भी हेड हूँ, और मेरे साथ डिपार्टमेंट के सारे साइंटिस्ट जो कैरी के हैं,
1: जी
0: वो किसानों के साथ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको क्यों लगाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे पूरे बैलेंस सप्लाई में जाए, खाली कुछ उर्वरक पे ना निर्भर रहे खेत में, और पूरे बैलेंस बैलेंस का जो मेन का जो बताना है कि जैविक खाद से ही बैलेंस से आता है,
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए जैविक खाद पे ज़्यादा फोर्स जोर दे रहे हैं।
1: जी, तो जो किसान आते हैं उनको आप किन गतिविधियों में शामिल करते हैं?
0: जैसे कि उसे ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस समझाना, जैसा किसान गोष्ठी में हम बताते हैं, बात करते हैं,

0: जी
1: उनके कुछ जाउट हो या किसी समय उनको समाधान देने का प्रयत्न करते हैं।
0: जी और ये जो इनपुट डीलर हैं और ये जो हितधारक हैं, इनके साथ आपके जो बैठक आयोजित हो रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है?
1: इनपुट डीलर्स जो है वो एक मेजर एक्सटेंशन एक्टिविटी जो करते हैं, उन लोग भी करते हैं क्योंकि वो अपना सामान बेचते हैं।
0: जी
1: तो जब जब उस किसान उनके पास जाता है कि किसी समस्या के साथ, तो वो उनको बताते हैं कि उनसे ही पूछते हैं कि भाई इसके कैसे कितना यूज लेना है, कितना डोज में डालना है। तो अगर वो समय वो सही से बता दें और किसान भी उसी तरह उनके बताए या हमारे बताए वाले मार्ग में चले, तो उसका रिसोर्स जो है बच जाता है। क्योंकि हम देखे हैं कि हम कुछ हमारा एक रिकमेंडेशन होता है, इनपुट डीलर एक अपना बताते हैं, तो इस चैनल को एक ब्रेक करते हैं। हम किसानों को ही बताते हैं कि आपका ज़मीन में कम है इतना ही डालिए, जो नहीं है उसको मत डालिए। अब इससे क्या होगा कि आपका जो रिसोर्स है वो बेकार जा रहा है, जहाँ जिसको ज़रूरत है उस पर हम जोर दे रहे हैं।
0: जी और चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आपकी ओर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश तो खेती बचाना अभियान का मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, हमें अपनी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के साथ में खेती करना है। पहला तो उसे हमें जैविक खाद से अपना पूर्ति करना है, उसके बाद ही रासायनिक खेत पे जाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ज़मीन जब स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा तो उसको हम बाद में हमारा ही स्वस्थ आ जाएगा। तो और उसकी जो जमीन जो हमारी जो भूमि किसान किसी भूमि है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लॉन्ग टर्म तक रहेगी, और हमें हमारे अपने अगले जनरेशन तक में हमें अपने प्रोडक्टिविटी को अच्छा मेंटेन कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज आपने हमें बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आपका जो केंद्र है वो क्या-क्या कार्य करते हैं और कैसे हमारे किसान साथी अपने खेतों को बचा सकते हैं। डॉक्टर रामाकृष्णा जी, आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर हमारे साथ कई बातें साझा की, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: खेत बचाओ अभियान, अभी आपने इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई रामाकृष्णा जी से की गई ये बातचीत सुनी। और इतनी बातों और जानकारियों के बाद आप कार्यक्रम के माहौल को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और आपके साथ आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

भाइयों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने ज़रूर पसंद किया होगा। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। साथियों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था कि मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए एक समूह में कितनी मछलियां होनी चाहिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रेरित प्रजनन के लिए एक समूह में अमूमन 3 मछलियों को रखा जाता है, जिसमें 1 मादा और 2 नर मछलियां होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के सही उत्तर के माध्यम से आप सभी ने ये जानकारी ग्रहण कर ली होगी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और भाइयों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी का ये अंक यहीं पर होता है संपन्न। अब मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्य।
1: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल कव्वाली। श्रोताओं, कार्यक्रम का

कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल कवाली। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुगल ए आजम से, शमशद बेगम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत रचना शकील बदायूनी की तथा संगीत दिया है नौशाद ने।

अब प्रस्तुत है फिल्म वक्त का गीत। गीत को अपनी आवाज़ दी है मन्ना डे ने, बोल साहिर की, और संगीत दिया है रवि ने।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में सुनिए फिल्म अमर अकबर एंटोनी का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

निकाह, श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा आगा और साथियों की आवाज़ों में हसन कमल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने।

0: अब सुनिए साहिर का लिखा व मदन मोहन की संगीतबद्ध में लैला मजनू फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।
1: अगर हमसे

श्रोताओं, अभी आप महफिल्ले कवाली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे आज के शेष कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएँ दी जाएगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 7:20 पर। 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रिका युवा संसार।

फिल्मी गीतों का लुत्फ़ लीजिए रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर कंट्री वाइड, रात 9:45 पर इनसाइट्स और रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुन पाएंगे। जबकि FM 100.9 MHz पर रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली आज के कार्यक्रमों का विवरण। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना।

5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा सुपारी में फसल सुरक्षा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे 6:10 पर।

6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का शीर्षक होगा जमाना। रामचरितमानस गान की 281वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशभक्ति गीत सुनिए 6:40 पर, 6:50 पर मौसम की जानकारी एवं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा।

सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जनसूचनाएं। 7:15 पर देश रागिनी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले, आज व कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार, भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश ने लोकतंत्र के संघर्ष और आपातकाल के काले अध्याय का स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत वृंदावन और होपटाउन में किसानों को प्राकृतिक खेती एवं मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। मानसून कार्निवल के तहत कार्वेंस्कोप तट पर 3 दिवसीय ओपन बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कल से शुरू होगा। और वंदे मातरम की भावना के साथ अंडमान निकोबार पुलिस अगले महीने सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करेगी।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल फरारगंज विकास खंड के वृंदावन गांव में खेत बचाओ अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पूजा बोहरा ने की। अपने संबोधन में उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग से कृषि भूमि की घटती उत्पादकता पर चिंता व्यक्त करते हुए हरित खाद के उपयोग पर बल दिया। वैज्ञानिक चितरंजन राउल ने धान की खेती में जैव उर्वरक एजोला के उपयोग पर तकनीकी व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के दौरान नारियल बागानों में मेलीबग की समस्या के प्रभावी नियंत्रण हेतु नीम तेल के उपयोग का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में गांव के लगभग 20 किसानों ने भाग लिया। इसी प्रकार होपटाउन ग्राम पंचायत हॉल में भी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा फसल उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान संबंधी जानकारी प्रदान करना था। ICARKVK के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. वाई रामकृष्ण ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा सब्जी एवं बागानी फसलों की उन्नत कृषि तकनीकों पर जानकारी दी। इस दौरान किसानों एवं विशेषज्ञों के बीच संवाद सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 20 किसानों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 28 जून को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत पोलियो टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8:30 बजे अर्बन हेल्थ सेंटर जंगली घाट में आयोजित समारोह के साथ होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन निदेशक वंदना राव मुख्य अतिथि होंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक डॉ. H.M. सिद्धराजू कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य अतिथियों द्वारा पात्र बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, बीच फेस्ट और बैडमिंटन टूर्नामेंट।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मानसून कार्निवल के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा खेल एवं युवा कार्य निदेशालय अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सहयोग से कल से 28 जून तक कार्बनस्कोप तट पर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए ओपन बीच वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बीच स्पोर्ट्स फेस्ट विक्ट्री वाइब्स के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में सभी इच्छुक खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए कल सुबह 8:30 बजे से प्रतियोगिता स्थल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रतियोगिता सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिभागी 9434290640 पर संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस अपने सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 9 से 12 जुलाई तक नेताजी स्टेडियम स्थित बहुउद्देशीय सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन करेगी। प्रतियोगिता का विषय फिटनेस, एकता और नशामुक्त समाज के लिए खेल, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और वंदे मातरम की भावना का उत्सव रखा गया है। प्रतिभागी टूर्नामेंट में एकल एवं युगल विभिन्न वर्गों में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 8 टीमों की भागीदारी होने पर विभागीय टीम स्पर्धा भी आयोजित की जाएगी। विजेताओं को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी, पदक एवं प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी 7 जुलाई शाम 5 बजे तक अपनी प्रविष्टियाँ स्पोर्ट्स सेक्शन APU पुलिस लाइन में जमा कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम समन्वयक विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन दक्षिण अंडमान द्वारा ग्राम रोजगार सेवक के 4 पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नियुक्ति 11 माह की अवधि के लिए समेकित मानदेय के आधार पर की जाएगी। जारी प्रेस नोट के अनुसार 2 पद विकसित भारत जी राम जी सीडी ब्लॉक लिटिल अंडमान तथा 2 पद विकसित भारत जी राम जी स्वराजद्वीप शहीद द्वीप एवं प्रातरापुर सीडी ब्लॉक के लिए निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के साथ 13% EPF का लाभ दिया जाएगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 12वीं उत्तीर्ण होना तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 14 जुलाई शाम 4 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। खेल एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा राज्य खेल परिषद एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप का कल नेताजी खेल परिसर स्थित बहुउद्देशीय खेल सभागार में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशासन के परिवहन सचिव रजनीश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और खेल भावना का सर्वोत्तम माध्यम है। खेल एवं युवा कार्य निदेशक आदित्य संगोत्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में छात्रों को खेलों एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर देश ने लोकतंत्र के संघर्ष और आपातकाल के काले अध्याय का स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत वृंदावन और होप टाउन में किसानों को प्राकृतिक खेती एवं मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। मानसून कार्निवल के तहत कार्बनस्कोप तट पर 3 दिवसीय ओपन बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कल से शुरू होगा। और वंदे मातरम की भावना के साथ अंडमान निकोबार पुलिस अगले महीने सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार में मौसम मुख्यतः सूखा रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार के कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी स्ट्रेट आइलैंड मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 27 तारीख को सवेरे 7 डिगलीपुर से मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात्रि 9 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 27 तारीख को सवेरे 7 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 12 रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 27 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओं, अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृतियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 1120312300 0319223200 और 0319223200। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीत। पहला गीत जो आप सुनेंगे लिया गया है फिल्म जेम्स से। गीत रचना नितिन रैकवर की, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, और संगीत दिया है नितिन रैकवर ने।

0: Dutch Bay.
1: श्रोताओं, अब पेश है मयूरपुरी का लिखा व प्रीतम की संगीत निर्देशन में चॉकलेट फिल्म का गीत सोनू निगम के स्वर में।
2: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Beat the beat. Yeah, this. Check this out now.

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सफलता की ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ना जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता एकदम से नहीं मिलती। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष, कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। जो लोग हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए असफलता से निराश होने के बजाय उसे सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है।

इसलिए असफलता से निराश होने के बजाय उसे सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है।

0: दोस्तों, आज इस माह का चौथा गुरुवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। राहुल देव बर्मन, जिन्हें प्रेम से पंचमदा कहा जाता था, भारतीय फिल्म संगीत जगत के सबसे महान और लोकप्रिय संगीतकारों में से एक थे। उनका जन्म 27 जून सन 1939 को कोलकाता में हुआ। वे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे। संगीत उन्हें विरासत में मिला था और बचपन से ही उनकी रुचि संगीत में थी। आर.डी. बर्मन ने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। उन्होंने भारतीय संगीत में पश्चिमी संगीत, जैज, रॉक और डिस्को के तत्वों का अनोखा समावेश किया। उनके संगीत की विशेषता मधुर धुने, नवीन प्रयोग और आधुनिकता थी। दोस्तों उन्होंने लगभग 331 फिल्मों में संगीत दिया और अनेक सदाबहार गीतों की रचना की। उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले तथा मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों के साथ काम किया। उनके प्रसिद्ध गीत आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे। आर.डी. बर्मन को अपने उत्कृष्ट संगीत के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें 3 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी संगीत प्रतिभा और योगदान के सम्मान में बाद में फिल्मफेयर आर.डी. बर्मन पुरस्कार भी स्थापित किया गया। 4 जनवरी 1994 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका संगीत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। भारतीय फिल्म संगीत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे सदैव संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं आर.डी. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध यह प्रसिद्ध हिंदी फिल्म गीत।

0: दोस्तों, हम आपको बता दें, यह गीत हमने लिया है फिल्म शान से और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी तथा आरडी बर्मन। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य देन है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन सकारात्मक बनता है। तो आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आपको सुनवाते हैं अनुष्का बरोई द्वारा यह वार्ता, आधुनिक जीवन में योग जरूरी है।
1: नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का बरोई है। दोस्तों, वर्तमान समय को आधुनिक युग कहा जाता है। विज्ञान और तकनीक के विकास ने मानव जीवन को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बना दिया है। आज हम मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और अनेक आधुनिक साधनों का उपयोग करके अपने कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ जीवन में तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और

शारीरिक निष्क्रियता भी बढ़ी है। लोग सफलता की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं बचता। परिणाम स्वरूप अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में योग एक प्रभावी और सरल उपाय के रूप में सामने आता है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। इसलिए आधुनिक जीवन में योग का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य देन है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक बनाती है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते रहे हैं। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है। योग मनुष्य को स्वयं के प्रति जागरूक बनाता है और जीवन को सही दिशा देने में सहायता करता है। दोस्तों, आज का जीवन अत्यंत व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। विद्यार्थी पढ़ाई के दबाव में रहते हैं, नौकरी करने वाले लोग कार्यभार से परेशान रहते हैं और व्यवसायी आर्थिक चिंताओं से घिरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग ने भी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। लंबे समय तक बैठकर काम करने से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद भी आज आम समस्याएं बन चुकी है। ऐसे वातावरण में स्वस्थ और संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, योग शरीर को स्वस्थ और सशक्त बनाने का प्राकृतिक माध्यम है। विभिन्न योगासन शरीर के अंगों को सक्रिय करते हैं और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार बेहतर होता है। योग मोटापा कम करने में भी सहायक है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नियमित योग करने वाले लोग सामान्यतः कम बीमार पड़ते हैं और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए किसी विशेष उपकरण या महंगे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसे हर आयु वर्ग का व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। दोस्तों, आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन चुका है। लगातार काम, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंता मन को अशांत कर देती है। योग मन को शांत और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के साथ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाता है। इससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से करता है। दोस्तों, आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यधिक दबाव है। ऐसे में योग उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। योग से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित योग करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई में अधिक ध्यान लगा पाते हैं। परीक्षा के समय होने वाला तनाव भी कम हो जाता है। योग उन्हें अनुशासित जीवन जीने और समय का सही उपयोग करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कार्यालयों में लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों को पीठ दर्द, गर्दन दर्द और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योग इन समस्याओं को कम करने में सहायक है। योग करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यह मानसिक थकान को दूर करता है तथा व्यक्ति को पूरे दिन सक्रिय और उत्साहित बनाए रखता है। इसलिए अनेक संस्थान और कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को योग अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। दोस्तों, योग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यह शारीरिक संतुलन बनाए रखने के साथ साथ मानसिक तनाव को कम करता है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। बुजुर्गों के लिए भी योग बहुत लाभदायक है। इससे जोड़ों में लचीलापन बना रहता है, शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और वृद्धावस्था से जुड़ी अनेक समस्याओं में राहत मिलती है। योग उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाए रखने में सहायता करता है। दोस्तों, योग केवल शरीर और मन

0: ही नहीं बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। योग से अनुशासन, धैर्य, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच जैसे गुण विकसित होते हैं। योग करने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है। वह दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना रखता है। उसके भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल का विकास होता है। यही गुण उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, विश्व के अनेक देशों में लोग योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह योग की वैश्विक लोकप्रियता और महत्व का प्रमाण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी योग के लाभों को स्वीकार कर चुके हैं। योग ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, आधुनिक जीवन में योग की आवश्यकता अत्यंत बढ़ गई है। यह केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है। योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को सकारात्मक बनाता है। बढ़ते तनाव, व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इस दौर में योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। हम सभी को अपने दैनिक जीवन में कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। यदि योग को नियमित रूप से अपनाया जाए, तो हम न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि एक सुखी, संतुलित और सफल जीवन भी जी सकते हैं। वास्तव में आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए योग एक अनमोल वरदान है। धन्यवाद।
1: आधुनिक जीवन में योग जरूरी है। दोस्तों, अभी आप इस संदर्भ में अनुष्का बरोई द्वारा वार्ता सुन रहे थे। वाकई दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योगासन हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। योग न केवल स्वास्थ्य का मार्ग है बल्कि आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। योग स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी है।

तो दोस्तों, युववाणी के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। और अब मैं लता राजनंदिनी, आपकी रेडियो दोस्त, चाहती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमारी बहू अलका से। किशोर कुमार की आवाज़ में गीत रचना अमित खन्ना की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: अब प्रस्तुत है फिल्म हलाल की कमाई का गीत। गीत को अपनी आवाज़ दी है आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने। इसके बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP है। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए फिल्म हमारी बहू अलका का गीत। गीत रचना अमित खन्ना की और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

हाला को श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आप सुनिए माया गोविंद का लिखा व कल्याण जी आनंद जी की संगीतबद्ध में हीरा और पत्थर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हंसते जख्म का गीत। गीत रचना कैफी अजमी की और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुनाहगार का गीत आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों में। गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

अभी आप चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करना होगी। मूल विभाग कैडर में समान एनालॉगस पद पर नियमित रूप से कार्यकर्ता अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के केवल या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए

पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडेटा, 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पिछले 5 वर्षों की APAR अथवा ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन पर उपसचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 39 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, अब गौरव गान के तहत आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडेटा, 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पिछले 5 वर्षों की APAR अथवा ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन पर उपसचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 39 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, अब गौरव गान के तहत आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।

0: श्रोताओं, गौरवगान के तहत अभी आप देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: महीने बेल्जियम के दौरे पर जाएगी, जहां वो मेजबान बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब चलते चलते एक बार फिर क्रिकेट मैदान की ओर चलते हैं, जहां महिला टी20 विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 139 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अतहर सईद और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको

0: जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रूचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे

0: न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय।

0: कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो

0: आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
1: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान एक स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर GB। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
0: जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है, उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ, हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
1: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए, हमने एक UPI सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें UPI सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब UPI को मानने को, रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की, विश्व की सब कार्ड कंपनीज हैं वो सब UPI इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती है। इसको एग्जाम्पल जब हमारे

0: सक्सेसफुल हो गया, फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए, तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना है,
1: जी
0: ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
1: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
0: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस, एप्लीकेशन रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है, और मोनोपोली टूट जाती है।
1: बिल्कुल
0: आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
1: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है, और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड, बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
0: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है, और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फना दूर की बात है, सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया, ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है, जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर जहां, R&D डिजाइन यहीं होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM आर्म ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी, वर्ल्ड की फेमस कंपनी, सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, और उनको 1,400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। जी, जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा AI की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह

0: हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और एआई के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें एआई टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास एआई की कुछ कंपोनेंट्स हैं और एआई कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास सारी आईटी कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया एआई के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। एआई क्वांटम मिशन पे आई है, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपको वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करे। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, हम 2015 में 81वें थे, अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो यूएन यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें एसएमएस भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चश्मे बदूर फिल्म के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें एसएमएस भेजा है हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से सुशील यादव, रेनू यादव, मोहित यादव, नमिता यादव और कार्तिक यादव ने।

ग्यारह चरमा श्री विजयपुरम से सोनाली और प्रियंका हमारे दोस्तों ने फरमाइश की है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म के इस गीत के लिए। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अब आपको सुनवाते हैं फिल्म टू स्टेट्स का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS भेजा है राजस्थान से विशाल ने।
1: आ आ आ

नीतीश, सतीश और गगन। श्री विजयपुरम से हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है फिल्म बर्फी के इस गीत के लिए। लीजिए सुनिए इनके पसंद का ये गाना।

हेडो श्री विजयपुरम से मोहित हमारे दोस्त ने मैसेज की है बर्फी फिल्म के इस गीत के लिए, तो आनंद लेते हैं इनके पसंद का ये गाना का।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार में मौसम मुख्यतः सूखा रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ स्थानों में वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 होने वाली है। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

59, 15, 16 सेकेंड। माइक नंबर टू टाइमिंग 4:59:27 सेकेंड।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:28 हुए हैं। आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: अंतरात्मा की आवाज वो सच्चा मार्गदर्शक है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। जब दुनिया की आवाजें भ्रमित कर दे, तब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि वही है जो हमें सत्य, ईमानदारी और सही मार्ग की ओर ले जाती है।
0: अनमोल विचार के बाद आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृवंदना।